एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुपाओ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि साहण गणज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं पागल लारी उदय तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछताया तत् विचार यह मथुरा जगतारन कौ अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनाया दिलहो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया जिन मन होर मुख होर से काढ़े कच्चिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरया जिन नाम ते पोए पार थीए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वतगार अपार अगम बेअंत तो जिन्ना पछता सच चुम्मा पैर मूं तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवन चेर पय ओ दर्शन देखे लिख कत है न छूटिए खेन खेन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुख टल गुर सेविय
अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसमदी नूर अर सौ कुरसौ चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहद जिस पास बैठिया सोई सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाहद जिस पास बैठिया सोई सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राग बिलावल महला पंजवा कार दूजा या नड़िए कार गावना एक सत गुर प्रसाद

मैं माना तेरी टेका आवरस आन पाबिरथिया प्यार राखन का तुम एक मैं मान तेरी

राखन कौ तुम एक सतगुर पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत निहला गुर की सेवा सो कर प्यारे जिस न होए सफल मूरत गुर दियो स्वामी सर्व कला पार पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूर सुन सुन जीवा सोए तिना की जेने अपना प्रभ जाता हर नाम आराध नाम बखान है हर नाम में ही मन राता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड पागी से काडिया प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम आराध्य निर्मल मन होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की कान तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणे

गावत ओद रह सुनत ओद रह बिन सह पाप कनेरे पशु परेत मुगद कौतारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारा पशु परेत मुगद कौतारे पाहन पार उतारा नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारा खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग बिलावल महला पंजवा घर दूजा यानड़िए कै घर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर सियाणपा बिरथिया प्यारे राखन कहो तुम एक।

0: करत बा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किश तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता ते जपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दसन दास तुद आगे बिन वतास लो
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगिया।

0: तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान मगता तेज अपना आप जर, सर्ब कला पर पूर दिसे जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मगत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाचे।

रंग परंग अनेक ना जापन करत बार जिया अदर जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा करपला तेरे कर आनंद विथाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसै जद कता

पौड़ी वढ़ी वड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जियां दियो सबके जान ला सब कुछ तेरा है वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाए तुद कर मान महता तेज अपना आप जार सर्प कला परपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगा

आये तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरी अनेक पढ़ह बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीव डे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया। जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखह जानह सोए
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरिन को आज संगरियै। पूरन होय हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाई पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पव, आदि जुगा दिस रूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरी तब ते को आँख तरी नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

वारणा सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो शबद धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागै घर सभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ।

चारु। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारु। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख उर तारु। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारु। सलोक

0: فتح
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरक गुर नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदा वैताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पा

दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखह प्रभु, नानक दे कर हाथ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइदा कटे हौ मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। जैसे हीरा हाथ मैं तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भारत भंडार जी। जैसे बार बांधे हुंडी लागत न पार कशु, आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बाट बीज आत सूखम स्वरूप होत, बोए से विभेद करे बिरखा विस्थार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं, जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी। सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाइ, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाइ। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कट्टी है, सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठे आसोही है साबना दावे साहु, सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठे आसोही है सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, जा कौ हर रंग लागो इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा।
जा कौ हर रंग लागो इस जुग मह, सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता कै, जा का सतगुर पूरा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षोड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, शीर्षादशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, शीर्षादशाह, जिस पास बैठिया

0: कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सुन्ना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खापोए खार, कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माख्यो, कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच तां परजाणीऐ जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए, सच तां परजाणीऐ जा सच रहे प्यार, नाओ सुन मन रहसीऐ तां पाए मुख द्वार, सच तां परजाणीऐ जा जुगत जाने जियो, तरत काया साधकै विच दे करता बियो, सच तां परजाणीऐ जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की, किछ पंदान करे सच तां परजाणीऐ जा तूं तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ कै बैरह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए, पावड़ी दान महंडा।

0: सत सुमाया।
1: पवित्र कर्म जिन्ना को तुद पाया तब तिनी खसम त्याया। इन्ना जनता के वास किछ नाही तुद वेकी जग तो पाया। एक नानू तू मिल लहे एक आपो तुद खवाया। गुर कृपा ते जाने जिथे रुदा बुझाया सहजी ही सच समाया।

तू करता करना मैं नाही जाओ करना होय बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात मैं जोर जोत मैं जाता अकल कला भरपूर है तू सच्चा।

0: ते नर जाल पपण गुर अमरदास सो प्रसन्न जे
1: तैं पढ़यो इक मन धरयो इक कर इक पछाण्यो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जान्यो सुपन इक परतख इक इक समय लीनो तीस इक अर पंज सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखों अलख है इको जे लाख लखों अलख है इक इक कर वरण्यो गुरु अमरदास जल पण तू इक लोड़ है इक मन्यो
2: श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन त्रूपर श्री प्रहलाद भगत ओ धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहणा थाप जोत जग तारी लहणै पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री राम दास सोढ़ी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चौहजुग गुर सेवा कर फल नहीं बंदे जो चरण शरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं परतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं सा

एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाह सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी टोडी महला पांजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभन चिंता लाहे हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभ चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूजै दूजी ठाहर हार परियो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेख छूट है हम निर्गुण लिहो उबारी साद बख सिंद सदा मेहरबान सबना दे आधारी नानक दास संत पाछ परियो राख लिहो एह बारी साद बख सिंद सदा मेहरबान सब ना दे आधारी नानक दास संत पाछ परियो राख लिहो एह बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता

0: होए धर तारा जू तो लिये निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मृगा शीश निवाया क्या थी जरडे कुसुदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादं सेल पूजस बगुल समाधं मुख झूठ विपुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गाल माला तिलक लिलाटं दो तोहती वस्त्र को पाटं जे जान सब्रह्म कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सत गुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद न सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नाव निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब था

न भयावय विषाद। कूड़ी दास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, श्रम त्रम का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर, मथे टिक्का तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर वै प्रमाण, मलेश तहले पुजे पुराण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चुके पर किसे ना जाना, देखे चौका कड़ी कार, ऊपर आए बैठे पुड़े यार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन असाडा फिटे, तन फिटे फिड़ करेन, मंज उठे चुली परेन, कहो नानक सच आई है, सच होवे ता सच पाई, पौड़ी चित्त अंदर।

जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाए, परवाह नाए किसै केरी बात सचै नाए। दरबार पर खर्च मंगा जावै दे ता खाए, दीवान को कलमे का हमा तुमा मेल। दर ले लेखा पिट छुटै